0: incognito mode, and I'm logged into YouTube, and if I just search something up, like the word stuff, I get a sponsored message at the top, as well as, in general, I would get ads if I clicked on videos like this. Now, what I can do is go to NordVPN. This is what I use and what I recommend to people, and I will leave the link to it in the description. It is only $3 a month. Now, I know that
1: तो आप भी ऐसे YouTube की वीडियोस में एड्स देख देख के परेशान हो गए हो अंकुर वाली को भी कोई बात नहीं भाई मैं बताता हूँ तुम्हें इसे हटाते कैसे हैं। सबसे पहले तो यार YouTube का प्रीमियम ले लो
2: क्या ये क्या बक रहे हो मां
1: बट ठीक है वो सब लोग नहीं ले सकते होंगे या नहीं लेना चाहते होंगे तो दूसरा सोल्यूशन है कि यार ब्रेव ब्राउजर यूज कर सकते हो वेब के अंदर ये तुम्हारी हर जगह से एड्स हटा लेगा तो यूट्यूब तो एक छोटी सी चीज है तीसरा एंड्रॉइड वाले स्पेशली अगर यूट्यूब के लिए चाहते हैं तो वेंसडे एपीके डाउनलोड कर सकते हैं उसके अंदर तुम्हारी एड्स भी हट जाएंगी अगर तुम चाहिए कि कोई वीडियो डाउनलोड करना है वो भी इजिली डाउनलोड कर सकते हो चौथा भाई आईओएस वालों के लिए तुम्हारे पास मेरे पास कोई ऐप नहीं है बट हाँ ब्रेव ब्राउजर यूज करके कर सकते हो जनरली एप्स अगर आईओएस में डालनी है वो जेल ब्रेक करना होता है जो ये करती है मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा तो भाई बस एड फ्री देखो एंजॉय करो और लास्ट अपने भाई को फॉलो कर लो यार मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तो आप भी ऐसे यूट्यूब की वीडियोस में एड्स देख देख के परेशान हो गए हो अंकुर वाली को भी कोई बात नहीं भाई मैं बताता हूँ तुम्हें इसे हटाते कैसे हैं सबसे पहले तो यार यूट्यूब का प्रीमियम ले लो
2: क्या ये क्या बक रहे हो मां
1: बट ठीक है वो सब लोग नहीं ले सकते होंगे या नहीं लेना चाहते होंगे तो दूसरा सोल्यूशन है कि यार ब्रेव ब्राउजर यूज कर सकते हो वेब के अंदर ये तुम्हारी हर जगह से एड्स हटा लेगा तो यूट्यूब तो एक छोटी सी चीज है तीसरा एंड्रॉइड वाले स्पेशली अगर यूट्यूब के लिए चाहते हैं तो वेंसडे एपीके डाउनलोड कर सकते हैं उसके अंदर तुम्हारी एड्स भी हट जाएंगी अगर तुम चाहिए कि कोई वीडियो डाउनलोड करना है वो भी इजिली डाउनलोड कर सकते हो चौथा भाई आईओएस वालों के लिए तुम्हारे पास मेरे पास कोई ऐप नहीं है बट हाँ ब्रेव ब्राउजर यूज करके कर सकते हो जनरली एप्स अगर आईओएस में डालनी है वो जेल ब्रेक करना होता है जो ये करती है मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा तो भाई बस एड फ्री देखो एंजॉय करो और लास्ट अपने भाई को फॉलो कर लो यार मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तो आप भी ऐसे यूट्यूब की वीडियोस में एड्स देख देख के परेशान हो गए